सचिया पातशाह कोई ना वो ना जा ने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: जैसे
1: के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रंग के हर जाने का धर्म के रं

0: जय सत्र मित्र नहीं जन बजाज है जय सब राम पित नहीं जन महाराज जय हम ब्रह्मा के नाम जय हम जय हे नहीं पियो दबान जय जय जाति बात बयान मित जय जय के नहीं जन चित्र जय जय रूप नहीं राग नहीं जय जय राम जाल को नहीं राम पे जय जन बजाज जय करम पे हम नहीं जात बात जय करम के नहीं पिया नाल जय नाम था के नहीं पर प्रयाग जय रूप को नहीं प्रसाद जय रूप को प्रसाद जय ग्रास बात नहीं दे है नास जय रास बात नहीं रूप रास जय रोग सब नहीं रोग जय रास जय रास आस को नहीं मोह दुगत रास आस जय काल मुगर जय नानक जय साल ऊपर गए नानक जय जय ने जो आनंद जय जय अलख रूप पद पद तत्व जय अलख रूप जय अटल जय जय देव जय रूप जय जय अनकार जय जन अनंत जय जय लोक सत तुरंत लोक सत तुरंत तन सीत नाम बरका सहत कई कल पे सावन वितान कई जन जो जग दया प्रचार सागर जग तब पार जन पार सादंत कई जो न पाते सन ब्रह्मंत कई जो ब्रह्म प्रभाव जुल मंत कई सी युक्त सात बल जो अंत में दे कई सी गुरु का वक्त फल करते वे कई गुरु का वक्त फल करते कई अगन होत्र कई बन हार कई अगन ओल पर कई बन हार कई दे कर सब ऊपर गुरु बाजने कई कब दे लागो पद पत्ता छड़े तब दे कई गीत गान चंद्र गीत कई रे विश्वासन दिया गीत कई बेद रीत जग बिया करति तम अगर ज्योति तम ते राधा राम कई देश दे जमा हार दंत कई देश दे बिंद हार दंत कई कर दे पद गान कर दे प्रचार नहीं नक बस पाए रत्न प्यार नहीं नक कई नीर गति बिना हर मसो पर दिए कर नीर गति बिना मसो पर दिए कर नीर बिंद ये विचार नहीं तब तास पाए रत्न प्यार नहीं तब तास पाए रत्न प्यार राम राज रीत कहूं जो गुदरम कई
1: जय
0: भगवान प्रचंड मई जय भगवान प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय खंड पखंड सपाए जय जय लोक दुख पखंड सपाए जय निरंजन दुख देव देव सच्चे जय तंत्र देव देव सच्चे अंधुता भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत पतंग अंधुता भया भूता चूत अनखंड स्वरूप अटंट प्रभा जय जहां पद वेद पुराण सब प्रभा जय वेद कते तो अनंत कहा जय वेद कते पद वेद कहा जय भूत भूत वेद के मन कहे विच प्रस जय देव पुर मुख कते विच प्रस जय कल कल लगता पुता पर जय कल कल पान पर जय बोकण धर्म सब वेद जय जय बोकण धर्म सब वेद जय जय जय बोकण धर्म सब वेद जय जय जय बोकण धर्म सब वेद जय जय जय बोकण धर्म सब एक नाम बिना ने कोट प्रति एक वेद उचार के साथ प्रति जो बात के साथ रसाय रसाय जो बात के चल के आप है जो आनंद सब प्रसाद लाल छंद गंज देव है पंच मद जन के देव तन पंच बात गंज के मन के पंच पंच मन के देव देव है सदा भेव भेव देव देव समस्त सब वृद्ध भेव देव समस्त सब वृद्ध दाता
1: अच्छेद छेद है सदा गंज गंज छेद है पूरा सदा गंज
0: ਦੀਆਂ ਰੂਪ ਰਾਲਿਆ ਹੋਰ ਹੈ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਕਰੇ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਾਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੈ ਨਾ ਪਾਤ ਹੈ ਬਚਾ ਬਚਾ ਹੈ ਬਰਨ ਹੈ ਨਾ ਪਾਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਨਰਤ ਹੈ ਅਨੰਤ ਤੇਜ ਜਨਿ ਹੈ ਹੁਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤੇਜ ਜਿਜ ਦੇ ਜਮਨੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਤਨ ਚਾਦ ਹੈ ਜਬਿਆਨੀ ਹੈ ਕਾਦ ਰੂਪ ਜਿਗੀ ਹੈ ਦੋਤ ਹੈ ਅਕਾਦ ਹੈ ਬਚੇ ਪ੍ਰਿਆਵ ਪੇਕੀ ਹੈ ਦਾਤ ਹੈ ਛੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੇਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਜਗ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕੋ ਗੁਰਮਤ ਕੋ ਲਾਭ ਹੈ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵ

को आत्मा स्वरूप है कहाँ से
कहाँ रंग राजा का मनहर सोगा कहाँ रंग राजा को रंग राजा की कहाँ रंग राजा को रंग राजा को कहाँ रंग राजा को बोचा कहाँ रंग राजा को बोचा कहाँ रंग राजा को बोचा कहाँ रंग राजा को बोचा कहाँ रंग राजा को बोचा कहाँ रंग राजा को बोचा कहाँ रंग राजा कहाँ ने मसंजम कहाँ कहाँ कहाँ ने मसंजम गोरा कहाँ सुनी कहाँ नाद गोरा कहाँ दोरा कहाँ दो सुरा दोर कहाँ कहाँ जो सुरा दो दादा जो सुरा हो चार दो बिचार दो बिचार चार दो सार दो सार दुर्जंदल दंडन असुर दुर्जंदल दंडन आदि ब्रह्म चरण सुर वारण पद उदय जंदरा से वारण गुड करते अपने गुड तेज प्रचंड खचे दंड तेज मते जय जय वसि माते जय जय वसि माते सते आदर पे चंद दुष्ट निकंदन सुर दंडन रूप सुते पंडा सुर दंडन मुंड में जय तुम रब सुर चरण में गम तवे तुम पवित्र चरण में गम तवे दान प्रहार नरक निवारण दान धारण अवृत रथे जय जय श्री नाथे मदन भुवन नाथ सुते नम कब रूढ़ मंद के बल पवन के बजा रूढ़ के तेज परम के उड़िया बांधे तेज बांधे सरिया मर्दन काल सुरान सन अष्टाद चतुर भुवन दम के अष्टाद के अपने भुवन दम के जन हुए से महान सुरम जाग जन कब प्रदान कर जिन मर्दन रम कब प्रदान कर जिन चंडा सुर चंडन मुंड में मुंड चंडा सुर चंडन मुंड में मुंड नाम निंद न गण दो जाओ बन के बन नि धारण जो जपते मन मन के सर धारण जो करते जो सब कर खंड बोल धारण जो खंड दो दो मत रे बोल रे जा बोल से मन के जो जाग रे बोल से मन को धरते वो मन का सर को धरते दामरी प्रभासन सुचर निवासन सृजन की महासन गुण कर प्रिय रक्षा सुच अचंत गुण ब्रह्मा देव अंत का अंदर राजा धन मृत्ये प्रदान श्रवण अंतर चिन्ति यत विमति जो जय अंत की यत करे जय जय निश्चय यत करे जय मल पाप चिन्तन राम करे पाप विनाश काम करे केसरी प्रवाह है सुख सन्ना है अमृता है जय सुध त्रि जय जय हो से मन कुमार का त्रि सुन नर मन बंद के देश में कंदन सुन नर मन मद नर मद रे का रूप में नय धन धार न रा बोल रे रा रे सत रे गंगा रे मोहन से रे मोहन गंगा रे मोहन में धर ले जय जय हो से सब ठले रे वास पाए बुद्धि सब का सन ले पाए बताल का सन ले संकट निवारण समुदारण संकट निवारण कवे द्वारो ते जंती द्वार जे जंती आदो मदर कल दल छे आदो सुध का समर्पण ते जे मित्र गण सब सुध का समर्पण ते जे जन जन आपसी जात जे जात नील का दफे नंद नील का दफे चंचला जखंगी अलग भुजंग

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस

जम की फांसी जिन निर्भव जिन हर निर्भव त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी।

राज करेगा खालसा के रहे ना कोई ख्वार होए सिमले ने बच्चे छन जो होए उड़के सामने शिखर कुटा पासार डंगा दे जब कान एक तोकार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र देशवे मोसुसा संस्कृति कृपालन प्रणासी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगे अवन विमुते देश देखो पते ने स्वरूपे दयापत आज नान गुरु गोविंद सिंह श्री काल भूमि सहाय दरबार में तुम दरबार सचखंड सदनंकारा लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा सब देवते

0: चके चके थलवारों ले बहुत अनंत
1: लाटू मधानियान गह पंखी पौंदिया लैन साह सुवै झाड़ पवाई जंत नान पौंदिया अंत अनंत बंधन बंध पवाए सोए पैक नचे सब कोई नच नच हसै चले सिरो

कुंभे बधा जल रहे जल बिलकुम न होए, ज्ञान का बधा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए, पौड़ी पड़िया हो।